0: भी ना जानू मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो मुझे कुछ होता है।
1: Make your decisions and form your opinions based on make your decisions and form your opinions based on a successful business, abundant material resources,
2: positions in society, society.
1: Make your decisions and form your opinions based on make your decisions and form your opinions based on a successful business, abundant material resources.